0: நியூசிலாந்து இந்து கோயில் சங்கம் வழங்கும் ஆலயம் நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் காலை 8:30 முதல் 104.6 பிளானட் எஃப்எம் அலைவரிசையில் பக்தி பாடல்கள், கோயில் சங்க அறிவிப்புகள் மற்றும் தினசரி தியானம், ராமாயணம் போன்ற ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகளை கேட்க தவறாதீர்கள்.
1: पंजाबी मेरी जान वर्गी, पंजाबी मेरी पहचान वर्गी, पंजाबी बुजुर्ग दी दुआ वर्गी, पंजाबी निरे खुदा वर्गी, पंजाबी नानक दी रबाब वर्गी, पंजाबी कोरे जवाब वर्गी, पंजाबी चमक दे आफताब वर्गी, पंजाबी नैणा दे नीर वर्गी, पंजाबी सजना दे नाम वर्गी ते पंजाबी बोर्ड दी छां वर्गी। भुल के भी ना इसनों भुलाउणा क्योंकि साडी पंजाबी है मां वर्गी। सुनते रहना प्रोग्राम नचता पंजाब हर मंगलवार की शाम 3:15 तो लेके 4:45 तक। बने रहो नचता पंजाब की टीम अमरीक जी तेरीना सिंह के नाल। धन्यवाद जी। नचता पंजाब 104.6 प्लैनेट एफएम ते ऑनलाइन सुनने लई www.planetaudio.org.nz/nachdapanjab।